0: संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became the Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of vitality, vibrancy and maturity of

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सोनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम

नदी के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती है, किंतु धैर्य पूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देते हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जर्जीतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचान कर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर लापटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे

0: सम्मतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य सम्बोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मंचे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुम् एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं दशवर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रिय परिवहन महायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुर्जेतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल

0: 175 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।
3: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंप्लीटिंग 25 इयर्स एज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंटीन्यूअस सर्विस टू द नेशन द कैबिनेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन गुजरात द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू हिज वर्क्स एंड पॉलिसीज फॉर व्हिच ही वाज ऑनर्ड अराउंड द वर्ल्ड। द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय हिम लेटर बिकम इंपॉर्टेंट टेम्पलेट फॉर द कंट्री। दस द गुजरात मॉडल गेन्ड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ग्लोबली and several of its successful approaches were subsequently implemented across India.
2: Aur Bharat bhar mein uski implementation hui.
1: He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक

साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु, गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है।

0: इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज

0: नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग, जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल

0: कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
3: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे कार्यक्रम रसधारा और मैं हूँ पॉपी आपके साथ। हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा 10 बजे तक और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत से जिसे गाया है अमित कुमार ने।

फिल्म किशन कन्हैया से आपने सुना ये खूबसूरत गीत, और आपको बता दो इस गीत को गाया था अमित कुमार ने, और साथ ही आपको बताएं कि इस गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

दोस्तों बैक टू बैक आपने तीन गीतों को सुना, एक तो हमने सुनाया किशन कन्हैया से सूट बूट, दूसरा आपने सुना मुझसे शादी करोगे से लाल दुपट्टा, और तीसरा गीत बहारों के सपने से चुनरी संभाल। अगर आप देखें तो ये तीनों गीत में एक खास बात है जो कॉमन है, वो ये है कि ये लिबास से जुड़ा हुआ है, कपड़े से जुड़ा हुआ है। वैसे आज इन गीतों को बजाने का खास मकसद है क्योंकि आज हम पूरे स्टूडियो में नहीं, मतलब हमारे इस स्टूडियो में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मना रहे हैं विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। तो इसी की वजह से आज मुझे लगा कि इन गीतों को बजाऊं और सुनाऊं आपको कुछ गीतों को जो लिबास से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स को ऑन किया है, मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा पॉपी के साथ।

धर्मकांटा से सुना आपने इस गीत को, और आपको बताएं कि कहानी शुरू होती है मई जून में, जब महाराष्ट्र के विदर्भ, गुजरात के सौराष्ट्र या बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसान पहली बारिश का इंतजार करता है। एक छोटा सा बीज काले रंग का जो हथेली में छुप जाता है और किसान उसे एक इंच गहरा जमीन में डालता है। ये बीटी कॉटन का बीज है, तकरीबन 750 रुपए के 450 ग्राम के पैकेट में आता है और किसान इसे कर्ज लेकर भी खरीदता है। 20 दिन में अंकुर फूटता है, दो छोटे छोटे हरे पत्ते निकल कर आते हैं और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई गुलाबी सुंडी की, सफ़ेद मक्खी की, पानी की किल्लत की। 80 दिन बाद अगर दूसरा अध्याय देखें तो 80 दिन बाद पौधा 4 फीट का हो जाता है, पीले फूल आते हैं, सुबह पीला, शाम को गुलाबी, फिर लाल होकर गिर जाता है। फूल की जगह एक छोटी डोरी बनती है हरे रंग की, अंदर सफ़ेद रेशे बन रहे होते हैं और 50वें दिन तक ये डोरी बड़ी होती है, फिर चिटक जाती है और तब दिखता है वो नज़ारा जिसे कहते हैं सफ़ेद बादलों का खेत। जी हाँ, सफ़ेद बादल जैसे फाहा खेत में कपास खिल जाती है। दिसंबर की सुबह खेत खेत नहीं लगता, मानो खेत बर्फ की एक सौगात बन गई है। ऐसे है कपास की फसल की बात। तो आज वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम आपको कपास से हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में, यानी कि कैसे कैसे ड्रेसेस बनते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं जो हमारे तन को, शरीर को आराम देता है, वो कपास जो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा भी है। और आप जानते हैं इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, जो जिसके बिना हम सोच नहीं सकते अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा अर्थात पहले ज़माने में कपड़ा जो बनता था वो सिर्फ और सिर्फ कपास ही होता था, और आगे चल के जिस तरह से आधुनिकता आई, मॉडर्नाइजेशन हुआ, कपास की जगह किसी और ने लिया, लेकिन कपास आज भी कपास है और कपास से जीन्स, पैंट, चोली पहनने में सब अच्छा लगता है।

क्रिसमस हो या होली, दिवाली हो या लोहड़ी, कोई भी फेस्टिवल हो, हाँ भाई, फेस्टिवल जैसे मानो कपड़ों के बिना अधूरा है। जी हाँ, अगर फेस्टिव सीजन आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता में अभी फेस्टिव सीजन नॉक कर रहा है, यानी कि बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बड़ा यहाँ का जो सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है वो है दुर्गा पूजा, और ये दुर्गा पूजा तब तक अधूरी है जब तक हमारे वार्डरोब नए कपड़े से भर नहीं जाता।

इन कपड़ों के लिए जो बेस्ट, जो सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है सूती के कपड़े यानी कपास। कुछ पौधों के बारे में मैंने जानकारी दी और अब आपको बताना चाहेंगे कि एक किसान एक दिन में 20 से 25 किलो कपास चुनता है हाथ से। ये जो गोले जो आपको खेतों में दिखते हैं उसे वो चुनता है 20 से 25 किलो। कांटे चुभते हैं, उंगलियां छिल जाती हैं और एक किलो कपास चुनने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दिन में ही 20-25 किलो कपास चुन लेते हैं और उसे कपास की बोरियों में भरकर मंडी जाता है। कोलकाता में ऐसी बहुत सी जगह हैं जैसे कि बड़ा बाज़ार या अकोला राजकोट की जो कॉटन मंडी है वहाँ पे ये सारे कपास को भेजा जाता है और यहाँ के व्यापारी इसे मील में भेजते हैं। नमी नापते हैं, रेशा खींचते हैं, लंबा रेशा यानी कि ज़्यादा दाम, और इस तरह से फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन में कपास को डाला जाता है और एक तरफ बीज निकलता है, खली बनता है जिसे जानवर खाते हैं और दूसरी तरफ साफ रुई। 100 किलो फूल कपास से 33 किलो रुई ही निकलती है, ये एक एवरेज माना गया है, बाकी बीज और कचरा। रुई को प्रेस करके 170 किलो की गांठें बनती हैं, जी हाँ बेल, जिसे बेल भी कहा जाता है, और एक ट्रक में 15 से 20 बेल की लोडिंग होती है। मैं पूरी कहानी आपको आज बहुत ही छोटे से वक्त में बताने की कोशिश कर रही हूँ और ऐसे ही ये जो कपास है वो खेत से उठकर पहुँचता है मंडी में। मंडी की बात की कहानी ज़रूर बताएंगे लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

उत्तर भारत के एक लोक संगीत से प्रेरित ये गीत आपने सुना फिल्म डर से। इसके संगीत का निर्देशन किया था शिव हरि ने। और आपको बताएं कि हमारी जो रुई है, जो कपास है, वो खेतों से हमने मील तक तो पहुंचा दिया। और मील के बाद क्या होता है? जी हाँ, अब रुई जब स्पिनिंग मील पहुंचती है तो पहुंचकर वहां पर बड़े बड़े मशीन्स में 20,000 रोटेशन पर मिनट घूमती है। जी हाँ, रुई को खींचा जाता है, बटती है और बन जाता है धागा। और 1 किलो रुई से 900 मीटर धागा बनता है। धागे की भी गिनती होती है, काउंट्स होते हैं 20s, 30s, 40s, और जितनी बड़ी गिनती उतना पतला धागा, यानी कि

जितना धागा की गिनती ज्यादा होगी कपड़ा उतना ही मुलायम और उतना ही नरम बनेगा, जिसे हम मलमल कहते हैं। धागा लूम पर जाता है, खट खट खट खट खट खट करघा चलता है, ताना बाना बुनकर कपड़ा बनता है, जिसे हम ग्रे क्लॉथ कहते हैं। और फिर आती है रंगाई का प्रोसीजर। जी हाँ, इस रंगाई जो होती है वो बड़े हौज में केमिकल, गर्म पानी, रंग डालकर एक बार में 500 मीटर कपड़ा रंगा जाता है। कोलकाता के कई इलाकों में, जैसे कि मटिया ब्रिज में भी आज भी हाथ से रंगाई की जाती है। अगर आप जानते हैं तो सांगनेर में भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो रंगाई और ब्लॉक प्रिंट्स के लिए भी जाना जाता है। ये उसके बाद रंगाई के बाद ब्लॉक प्रिंट्स होती हैं, यानी कि प्रिंटिंग का काम, कहीं पर स्क्रीन प्रिंटिंग, कहीं पर ब्लॉक प्रिंटिंग। और इस तरह से फिर कपड़े को और भी सॉफ्टनर देकर नरम किया जाता है। और फिर फाइनली जो कपड़ा जाता है डिज़ाइनर के पास, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के बड़े बड़े शोरूम्स में, बुटीक्स में, वहाँ पर कटता है, सिलता है और साधारण साधारण लिबास बिल्कुल असाधारण तरीके में बनते हैं। जी हाँ, 2.5 मीटर का कपड़ा, 2 घंटे की सिलाई, मजदूरी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, और फिर लगता है ब्रांड का टैग। कीमत हो जाता है 10 गुना। जो कपड़ा मील से 200 रुपये मीटर निकलता है, वो शोरूम जाते जाते 2000 का बन जाता है। भाई बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, और उसके बाद फाइनली अंत में कपड़ा बनकर तैयार होकर बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में आपको दिखते हैं, और आप जाकर वहाँ पर शीशे में या ट्रायल रूम में जाकर उसे अपने आप में ढाल कर देखते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि वो शर्ट जो 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 6 महीने लगे, 30 लोगों के हाथ जुड़े उसके साथ, और एक किसान की 6 महीने की उम्मीद होती है, और हम कहते हैं अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है, ये मेरे को नहीं जच रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की पूरी की कहानी। जो कपड़े के लिए आप 1,500 रुपये दे रहे हैं, उसे शायद किसान, उसका जो हिस्सा है वो बहुत ही कम, शायद 100 रुपये तक भी उसे नहीं मिल पाती। तो ये है कपड़े की कहानी। तो अगली बार जब आप सूती का कोई शर्ट या ड्रेस या कोई भी अटायर पहने, तो ये ज़रूर समझें कि उसके पीछे की कहानी क्या है। फिलहाल 9:55 मुझे आपसे जुदा होना है, और जाते जाते अलका याग्निक का ये सुपर डुपर हिट फ्रॉम द फिल्म खलनायक आपके लिए, आप सभी दोस्तों के लिए। और इस गीत के साथ पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचिता। सामीन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 मिनट हो रहे हैं। आकाशवाणी कोलकाता के संचिता चैनल से और न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप से आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा। और सामईन, अब पेश है हमारी अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में, और ये इसी मौजू के साथ इंसाफ करता हुआ नगमा है, क्योंकि इसमें बात की गई है सिन्फ़े नाजुक की। सिन्फ़े नाजुक को कोमल, नाजुक, कमज़ोर समझा जाता है, और इस नगमे में इन्हीं जज्बातों का इजहार किया जा रहा है कि सिन्फ़े नाजुक भी कमज़ोर नहीं है। नाजुक बदन भले ही है, लेकिन उसके हौसले, उसकी हिम्मत की कोई मिसाल नहीं। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में यह खूबसूरत नगमा।

फिल्म आखिर क्यों से आशा भोसले की आवाज़ में आपने ये एक पैगाम देने वाला नगमा सुना, जिसमें ये बताया गया कि औरत कमज़ोर किसी भी तरह से नहीं है।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत नाजुक सा नगमा। और घर साज छेड़ा के तहत आज हम बात कर रहे हैं नाजुक मिजाज, नाजुक तबीयत, नाजुक बदन के मुतालिक। और उर्दू और हिंदी शायरी में इस नज़ाकत को हमेशा बड़े खूबसूरत इस्तियारों में बयान किया गया है। हम आपके लिए जो अगली पेशकश लेकर आए हैं वो है मन्ना दे, मोहम्मद रफ़ी, मीना कपूर, आशा भोसले एंड कोरस की आवाज़ों में एक बहुत ही खूबसूरत सा कव्वाली। समात फरमाएं फिल्म ताजमहल से ये कव्वाली। इसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, जबकि मौसीक़ी से आरास्ता किया रोशन ने।

0: करे कोई।
1: आप सुन रहे थे ये चुलबुला सा नगमा मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले मन्ना दे और कोरस की आवाज़ों में फिल्म ताजमहल से। और सामिन अब हमारी आज की आखिरी पेशकश सुनते हैं। आज हमने आपके लिए खूबसूरत फिल्मी नगमे सजाए जिनके बोलों में नज़ाकत एहसास में कोमलता और मौसीकी में मोहब्बत की नर्म खुशबू थी। सामिन इसी के आज की आखिरी पेशकश के साथ ही मैं आपकी मेज़बान शहनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ और ये हमारा प्रोग्राम इसके साथ अंजुमन ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रोग्राम जो कि होगा गानेर बेला का। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता और आपके समातों के हवाले मैं करके जा रही हूँ मुकेश की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र से ये नगमा।

स्टूडियो की डिजिटल क्लॉक में दोपहर के 12 बज चुके हैं और यही वक्त होता है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि का। मैं हूं पॉपी आपके साथ। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी संचयिता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेमलता की आवाज में एक खूबसूरत गीत से।

दोस्तों सुरभि के अंतर्गत आता है चर्चा और पहल। आज चर्चा में दो विषय को हम लेकर आए हैं, एक तो है वर्ल्ड कॉटन डे अर्थात विश्व कपास दिवस और साथ ही जन्म तिथि बेगम अख्तर की। तो वर्ल्ड कॉटन डे के ऊपर आज आपको बताना चाहेंगे कि आज 7 अक्टूबर है और आज के दिन पूरे विश्व में इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। जो कपड़ा आपने पहना है उसी का दिन है आज। यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में डिसाइड किया कि हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाएंगे। 2021 से ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस डे बना, क्योंकि दुनिया के 75 देशों में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान कपास उगाते हैं और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया यानी कि भारत। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वाइट गोल्ड। एक टी शर्ट बनने में 2700 लीटर पानी लगता है और उतना पानी जितना एक इंसान 2.5 साल पीता है। सोचिए कॉटन जो कि 100% नेचुरल है, प्लास्टिक नहीं है, गर्मी में ठंडा रखता है, सर्दी में गर्म, बायोडिग्रेडेबल है और सड़ता है और पोल्यूशन नहीं करता अर्थात प्रदूषण नहीं फैलाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे

किसानों की रोजी रोटी है ये कपास। आज भी गुजरात सबसे ज्यादा कपास उगाता है, यानी कि भारत के 30% में, भारत में जितना भी कपास उगता है उसका 30% केवल और केवल गुजरात में उगता है। साथ ही महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल में भी कपास उगाई जाती है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता में कॉटन का मतलब है दक्षिणेश्वर की साड़ी, कॉलेज स्ट्रीट का कॉटन कुर्ता, गरियाहाट की कॉटन के गमछे, और सबसे बड़ी बात जो सफ़ेद कुर्ता पजामा हम पहनते हैं वो भी सूती का होता है। एक शब्द में या एक लाइन में कह सकते हैं कि वर्ल्ड कॉटन डे मतलब खेत से कपड़े तक की कहानी, एक किसान के पसीने से जो कपड़े बनते हैं उस वो सफ़र। तो अगली बार जब आप कोई कपड़ा पहने तो ज़रूर शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें, आभार व्यक्त करें उन किसानों का जिनके बदौलत आज हम ये सूती के कपड़े पहन रहे हैं और शरीर को ठंडा रख रहे हैं।

चर्चा है में आज हम बात करेंगे बेगम अख्तर की मलिकाए गजल अख्तरी बाई से बेगम अख्तर का सफर। फैजाबाद की गलियों से लखनऊ की महफिलों तक एक आवाज ऐसी थी जिसमें रोने की भी तहजीब थी और नाम था बेगम अख्तर। आज ही के दिन सन 1914 में उनको जन्म हुआ और आज उनकी जन्म तिथि है। असली नाम अख्तरी बाई फैजाबादी। बचपन से ही सुर की पक्की, 7 साल की उम्र में उस्ताद अता मोहम्मद खां से उन्होंने देखा और कहा इस बच्ची में कुछ तो बात है, और फिर पटियाला के उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से सीखा, वो उस्ताद जो किसी को आसानी से शिष्या नहीं बनाते थे। आपको जानकर ये खुशी होगी कि महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड निकाला, उनका मार्केट में उनका पहला रिकॉर्ड सामने आया। 1933 में उन्होंने फिल्मों में पदार्पण किया, यानी कि बॉलीवुड में, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रही और एक बार फिर से शादी के बाद पूरी तरह से अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लिया। लेकिन फनकार का जो फन है वो कहाँ तक आप रोक सकते हैं, और यही वजह थी कि 1949 में एक बार फिर से वो वापस आई, और अब उसकी आवाज में वो चीज थी, वो दर्द छुपा था कि लोग उस दर्द को भी खुशियों के वक्त अपने से अपने महफिल में सजाना चाहते थे। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा उनके आवाज में।

बेगम अख्तर की आवाज में आपने सुना ये गजल। और दोस्तों अब है पहल, पहल के अंतर्गत आज है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि साल 2015 को पानीपत से ये इस योजना का लॉन्च हुआ था। वजह बेटियों की संख्या में गिरावट, भ्रूण हत्या रोकना। इस योजना के माध्यम से 3 लक्ष्य रखा गया है, भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों को स्कूल छुड़वा देने पर रोक और हर स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट कंपलसरी करना और बेटी को बोझ नहीं समझना। आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, ये एक अभियान है और इसके नीचे योजना जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना और साथ ही कन्याश्री योजना। इस योजना के माध्यम से सेक्स रेशियो में काफ़ी बढ़त हुई है। पहले 918 से 933 हो गया और साथ ही लड़कियों का स्कूल एनरोलमेंट लड़कों के बराबर हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये विशेष योजना भारत की बेटियों के लिए है ताकि बेटियां बढ़ें और बेटियां पढ़ें और समाज का स्तंभ बनने में हिस्सा बने। और दोस्तों थोड़ी ही देर में आप पाश्चात्य कार्यक्रम सुनेंगे, प्रस्तुतकर्ता संयुक्ता नंदी। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर 12:20 तक कार्यक्रम सुरभि। फिलहाल इसके साथ पॉपी को दीजिए अनुमति।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujhtar.

0: जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई।

0: दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
3: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के

0: साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
1: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
3: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
1: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान प्रचारित होच्छे संचयिता प्रचार तरंगे 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে সময় 2:30:15। এখন শুনবেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তবলা শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়, তাল রূপক, হারমোনিয়াম সঙ্গতে সনাতন গোস্বামী। শুনবেন তবলা।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধিবেশন। সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্জ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে সময় 4:59 হয়ে 48 সেকেন্ড। একটু পরেই শুনবেন সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में

रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में इटली के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में G7 G20 अंतर्राष्ट्रीय खतरों और एकीकृत रणनीति के निदेशक पावलो मारी से मुलाकात की। श्री मारी नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत इटली के संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत यात्रा पर हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP 31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना बेहद आवश्यक है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष कपास दिवस का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:21 है, स्टूडियो की घड़ी का समय, आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर्स अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं शाम का कार्यक्रम उर्वशी, और आज आप सुन रहे हैं आपकी रीति दोस्त शर्मिष्ठा के संग शाम के इस कार्यक्रम को।

5:25 है स्टोरी घड़ी के संग और जुड़े हुए हैं आपके अपने पसंदीदा शाम के इस कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है उर्वशी। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दो शर्मिष्ठा के संग और उर्वशी के अंतर्गत। आज है बुधवार की शाम तो हम लेकर आते हैं आपके लिए दिव्य, जिसमें आज बात होगी देवी ब्रह्मचारिणी को लेकर। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती हैं। ये दुर्गा देवी का ही एक शांत सुंदर और शक्तिशाली रूप है जिसमें वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही होती है।

उर्वशी के अंतर्गत दिव्य में आज हम बात कर रहे हैं देवी ब्रह्मचारिणी को लेकर और उनके रूप के बारे में। और अधिक अगर कहा जाए तो उनके रूप में शांत, सुंदर और शक्तिशाली होना शामिल है। इसके अलावा देवी अपने सबसे सरल रूप में होती है, ब्रह्मचारिणी रूप में। एक सादी सफ़ेद साड़ी देवी ने धारण की होती है। वे एक हाथ में कमंडल या फिर जल पात्र और दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए होती हैं। देवी पार्वती का अविवाहित रूप है ये। उनका ध्यान मग्न रूप और उनके चेहरे पर परमानंद और शांत शक्ति छलक रही होती है, जो उनके द्वारा किए गए कठोर तपस्याओं का प्रमाण है।

देवी ब्रह्मचारिणी को लेकर चलिए करते हैं और थोड़ी बातें, क्योंकि देवी अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत कर रही होती हैं, इसीलिए ये दिन ध्यान के लिए शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हैं, देवी उन्हें प्रेम, सफलता, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि देवी की भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने से भक्तों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने, मन की इच्छा को पूरा करने और आखिरकार मोक्ष या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है। ब्रह्मचारी देवी ने कठोर तपस्या की होती है और इसीलिए वे अपने भक्तों के दुखों को भी खूब समझती हैं।

5:42 चुड़ी की घड़ी का समय आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है और सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत दिव्य और दिव्य में आज बात हो रही है देवी ब्रह्मचारिणी को लेकर। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप

करने के पीछे की कहानी या फिर कथा को अगर हम ध्यान से सुने या फिर पढ़ें तो ये समझ में आता है कि देवी का जन्म पर्वतों के स्वामी हिमवान और उनकी पत्नी मेनवती के घर हुआ था। पर्वत देवता की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती बढ़ा। बचपन से ही उन्होंने ऋषि नारद से भगवान शिव की बहुत सारी कथाएं सुन रखी थीं। इन कथाओं से प्रभावित होकर उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय कर लिया और उस दौरान भगवान शिव ने सांसारिक मार्गों का त्याग करके सन्यासी बन गए थे और हिमालय में ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। पार्वती ने उनके निवास की देखभाल का जिम्मा उठाया। निवास को साफ सुथरा रखना, उनके लिए भोजन तैयार करना और निवास को फूलों से सजाने का दायित्व देवी ब्रह्मचारिणी ने लिया था। वे ध्यान और प्रार्थना भी साथ साथ कर रही थी। हजार वर्षों तक इतनी कठोर साधना करने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति पार्वती के सामने आए और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान शिव को भिक्षु कहकर उनकी निंदा की। उसकी अपमानजनक भाषा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की रक्षा की। उनकी भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर वे वृद्ध व्यक्ति जो वास्तव में भगवान शिव ही थे, उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए।

5:50 है स्टूडियो की घड़ी का समय। जुड़े हुए थे आप कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत दिव्य के साथ, और दिव्य में आज बात हो रही थी देवी ब्रह्मचारिणी को लेकर। आज उर्वशी आप सुन रहे थे आपकी रेडी दो शर्मिष्ठा के संग, और अगली और आखिरी पेशकश आप सभी श्रोताओं के लिए आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सतराना आप सभी सुनने वालों के लिए। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिषा को दीजिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा 6:10। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ और सुनते रहिए इस तराने को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ।

6:10 है, स्टूडियो घड़ी का समय। फिर एक बार शर्मिष्ठा करती हैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर्स अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और समय हो चला कार्यक्रम वार्ता का। वार्ता में आज का हमारा विषय है वर्ल्ड कॉटन डे फ्रॉम फार्म टू फैशन। हर साल 7 अक्टूबर को, जी हाँ, आज ही के दिन विश्व कपास दिवस अर्थात वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कपास से उत्पादन, उसके महत्व और खेत से लेकर फैशन तक की पूरी प्रक्रिया को न्याय संगत और टिकाऊ बनाना है। शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर साल 2019 को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली देशों की पहल पर हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के अनुसार अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी और उद्देश्य यही था कि कपास किसानों की आय जीविका सुधारना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और कपास उद्योग में तकनीकी विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। खेत से फैशन तक कपास की यात्रा के बारे में अगर बात करें तो कपास के रेशे से लेकर स्टाइलिश कपड़े बनाने तक कई चरण होते हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है उसे खेती, जी हाँ, खेती के तौर पर इस चरण की शुरुआत होती है। किसान खेतों में कपास के बीज बोते हैं, उचित सिंचाई, जैविक खाद और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से कपास के पौधे उगाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कटाई की। जब कपास से डोड़े पक जाते हैं तब उनकी तुड़ाई की जाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। उसके बाद बारी आती है उटाई की। इस प्रक्रिया में कपास के रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। कपास के बीजों का उपयोग तेल और पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है।

कढ़ाई और कताई की अगर बात करें तो उटाई के बाद वाला नंबर कढ़ाई और कताई का ही होता है। साफ किए गए रेशों को मशीनों द्वारा सूत या फिर धागे में बदला जाता है। उसके बाद बारी आती है बुनाई और रंगाई की। धागों को आपस में बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़े की रंगाई और फिनिशिंग की बारी आती है। फैशन और गारमेंट्स की अगर बात करें तो अंत में एस्थेटिक

और आरामदायक सूती कपड़े से डिज़ाइनर कपड़ों के अलावा तौलिए, बिस्तर के अलग अलग कपड़े जैसे जो उत्पाद होते हैं उन्हें तैयार किया जाता है और बाज़ार में पहुंचाया जाता है।

वार्ता के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कॉटन डे पर। फ्रॉम फार्म टू फैशन, सूती की यात्रा।

6:15 वार्ता के अंतर्गत अब रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर और कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत है ये। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिलूंगी बहुत जल्द, समय रहेगा 7:30, लेकर आऊँगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण।

0: राजनैतिक यात्रां देशवासीनाम् अनन्य विश्वासाय समर्पयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् वर्तमान शासनस्य नीतयः सर्व नागरिकाणां समस्यानां स्थायी समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: भारत स्विट्जरलैंड देशयोः द्विपक्षीय वार्तायाः अंकीय प्रौद्योगिकी नवीन ऊर्जा आर्थिक विकास क्षेत्रेषु च गभीरा विचार विनिमय प्रक्रिया सुसंपन्ना। उभयोः देशयोः प्रतिनिधिभ्याम् अनुसंधान नवाचार क्षेत्रयोः सहयोगाय प्रलेखेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यम् उद्देश्यं तावत् द्विपक्षीय व्यापारवर्धनम्, स्वच्छ प्रौद्योगिक्याः आदान प्रदानम्, उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सम्बन्धानां नूतन शिखराणां प्रति नयनं च अस्ति। जागतिक भू राजनीतिक अनिश्चिततानां मध्ये वर्धमानायाः मुद्रास्फीतेः नियन्त्रणाय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन प्रायः 3.5 वर्षानन्तरम् अद्य मुख्यनीतिगत अनुपातः 25 आधाराङ्कैः संवर्धितः, येन सः 5.5% प्राप्तः। द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः घोषणां कुर्वन् रिजर्व वित्त कोषस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवोचत् यत् मौद्रिक नीति समित्या सर्वसम्मत्या नीतिगत रेपो अनुपातस्य 25 आधाराङ्कैः संवर्धनस्य निर्णयः गृहीतः। रिजर्व वित्तकोषेन वर्तमान वित्तवर्षाय वास्तविक सकल स्वदेशीयोत्पादस्य वृद्ध्यनुपातः 7.1% भविष्यतीति अनुमानितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली आरक्षिदलेन कांग्रेस नेतृभ्यां राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्राभ्यां विरुद्धं अनधिकार प्रवेशारोपे प्रथम सूचना प्रतिवेदनं पंजीकृतम्। अभियोगः एषः ह्यः विहिते विरोध प्रदर्शने नवदेहल्यां स्थिते आकाशवाणी भवने अनाधिकृत प्रवेशाय कृतः। इदम् अभियोगपत्रं संसद मार्ग आरक्षी स्थाने सम्बद्ध धारासु पंजीकृत्य अन्वेषणं प्रारब्धम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ह्यः विपक्षीय इंडिया गठबंधनस्य अनेकैः संसद सदस्यैः संसदः मकरद्वारात् निर्वाचनायोगस्य मुख्यालयं यावत् प्रतिषेध यात्रायाः आह्वानं कृतमासीत्। कांग्रेस नेतुः राहुल गांधिनः नेतृत्वे प्रचलन्ती इयं यात्रा आकाशवाणी भवनस्य निकटे आरक्षिदलेन स्थगिता। तदनन्तरं कांग्रेस नेतारः आकाशवाणी भवने प्रविश्य तत्र उपवेशन प्रतिषेधनं कृतवन्तः। फिजी देशे आयोजितायां फ्री कॉप 31 इति पूर्व सम्मेलनोपवेशने भारतेन सुदृढ़ जलवायु कार्याचरणाय अथ च पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनाय सबलम् आह्वानं विहितम्। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन प्रतिपादितम् यत् वैश्विक तापमान वृद्धिम् 1.5 अंश सेल्सियस मितं यावत् सीमितं कर्तुं पारस्परिक अवबोधे विद्यमानानां भेदानां निवारणं, पूर्व प्रतिबद्धतानां पूर्तिः अथ च लक्ष्य प्राप्तये प्रगतेः द्रुतीकरणं अनिवार्यं वर्तते। सत्रं सम्बोधयन् श्री यादवेन सामर्थ्य निर्माणस्य अथ च कार्यान्वयन साधनानां समुचित उपलब्धतायाः आवश्यकता प्रतिपादित।

0: सह उच्च प्रभावोत्पादन जलवायु शमनस्य व्यापक अनुकूलनस्य सहैव जलवायु वित्तस्य अन्य संसाधनानां च प्रभावी वितरणस्य मूर्तरूपाणि उदाहरणानि प्रस्तोतुं विश्वसमुदायम् आहूतवान्। षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमस्य वर्षस्य प्रतिष्ठास्पदः रसायनशास्त्र नोबेल पुरस्कारः फ्रांस देशस्य उद्भट रसायनशास्त्रज्ञाय हेनरी बी कागन महोदयाय तथा जापान देशस्य विद्वद्वराय केन्सो सोआई महोदयाय च संयुक्त रूपेण समर्प्यते। स्वीडिश संस्थया संसूचितं यत् एताभ्यां वैज्ञानिकाभ्यां रसायनशास्त्रे अभूतपूर्वाः शोधाः विहिताः। भारतीय ऋतुविज्ञानेन विभागेन नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरानां कतिचित् स्थलेषु अद्य अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं व्यञ्जितम् इति वार्ताः।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় 6:30 হয়ে 12 সেকেন্ড। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন শুনবেন সরোদ শিল্পী অভিষেক লাহিড়ি, রাগ যোগ তবলা সঙ্গতে তিমির রায়চৌধুরী। সরোদে শুনবেন রাগ যোগ।

0: এতক্ষণ শুনছিলেন শরৎ, শিল্পী অভিষেক লাহিড়ী, রাগ যোগ তবলা সঙ্গতে তিমির রায়চৌধুরী। আকাশবাণী কলকাতা একটি ঘোষণা। শতবর্ষের পথে আকাশবাণী কলকাতা, এই উপলক্ষে আকাশবাণী সংগ্রহশালা থেকে শুনছেন বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতি বুধবার রাত 9:30 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গ ও ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবায়। এই অনুষ্ঠান চলবে আগামী 25 আগস্ট 2027 পর্যন্ত। শুনতে ভুলবেন না প্রতি বুধবার রাত 9:30 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে ও ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবায় আকাশবাণীর সংগ্রহশালা থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান। ঘোষণাটি শেষ হল। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। একটু পরেই শুনবেন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू। थैंक यू
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू है?
2: देखिये, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार की आप बात कर रही है, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या हैं? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, United States $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। Today there are 3 maritime choke points जो बंद हैं, बाबल मंडप, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट व्हिच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में,
2: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप 2 या 3 थिएटर्स बनाए। एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजन, सो पश्चिमी

0: तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर, और दो तीन जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर. बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इन टू दिस वन थिएटर कमांडर. अब देखिए, CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. So it's not army taking its plan, navy taking its plan. It is integrated plan which the CDS takes. Sindoor mein dekhiye kya hua. So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. Aur iske piche bhi ek lamba itihas hai, prashthbhumi hai. So that is optimizing all available resources for बेस्ट कॉम्बैट आउटकम्स.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेस में देख रहे हैं.
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए, क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, वी हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949. उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स. तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी. गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16. आप देखें, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. सो दोज आर द स्टेप्स. टूडे वी आर इन वॉट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस, देन यू हैव टू गो टू इंटीग्रेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सिविल मिलिट्री फ्यूजन, विच इज होल ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, इट हैज पिक्ड अप एन अमेरिकन कॉल्ड ओमार यागी, नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटेरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन. तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए, इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है. देखिए, पहले क्या होता था कि a service chief would go to the रक्षा मंत्री through the defense secretary. So political executive, but the serve soldier could get to him only through the bureaucratic ear.
1: The hierarchy had to be.
0: Now it is equals. Defense secretary, CDS. Both. So that the Raksha Mantri gets the best advice. Iska, that is the logic. Aur jaise maine kaha, iske jo ab hum civil military fusion ki or agrasar hai.
1: Ji.
0: Aur iske meel patthar kya honge? Pratibha, talent. Maine uska ek udharan diya aapka. Innovation, navachar. Today you can't have outdated processes. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, drones, AI, ये सब हकीकतें हैं. And along with innovation, deregulation. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, he said private sector और startups के सिलसिले में, he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. नियमों का जाल. So CDS DMA is a symbol. पर इसके पीछे गहरा सोच है.
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन.
0: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर. दूसरा जो केंद्र बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए, हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है. सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है, उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ. It is such a powerful military. There is no military which can project power two oceans away. बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि व्हाई द यूएस हैज नॉट डिलीवर्ड एन एपिक फ्यूरी।

0: का निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, टीआरपीएफ, टीएएसएफ, आईटीबीपी ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है। तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं। जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे। और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया, तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस था, नक्सलाइट्स को ही पता है,
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
0: बिल्कुल जी, जी। तो फोर्सेस जब वहां जम गए, तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट्स से, तो उस भय को दूर कर दिया गया और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
0: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए। और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे। और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए, ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें। सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा।
1: सो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से। और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं नक्सलाइट्स जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था। लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा संतान बढ़े। तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको, जो कि ट्रेंड आदमी थे, उनको स्टेट पुलिस ने भी लिया।

0: आ गया। वहां पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना सीएएफ है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स। उसके अलावा जैसे बताया डीआरजी भी है, जो अच्छे ट्रेन थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थ और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल, जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसेस भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और सीआरपीएफ एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इसे कोई तकलीफ है सीआरपीएफ में पहुंच जाएंगे, वहां से खबर पहुंच जाएगी डीएम तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि सीएपीएफ पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन सीएपीएफ से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है
1: जी।
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं आईजी झारखंड था तो मेरे पास दो हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली। और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहां पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहे थे, ताकि और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाए नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन यह काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनने एक मूलभूत रूप से सुधार लाए। जैसे मैंने आपको बताया एचएएल की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट एचएएल स्मार्टन्स अप, सो दैट आरपीएसयूज आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती है। सो वी नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाय अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाए। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब जी

0: GSQR,
1: बाहर लोग बोलते हैं GSQR is dead. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म. देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल. मैं आपको बताऊं कैसे. हम जब बाहर जाते थे 2005-06 में, तो लोग कहते थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं. हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट. टुडे द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores.
2: Yes.
1: अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है.
2: और 80 देशों में जा रहा है.
1: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस. आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग. और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है. इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट. हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को घेरा है. सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपॉलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस. एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेर वी हैव, इन फैक्ट we are moving from being importers from the world yes. to exporters to the world.
2: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक items हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक earmark करते हैं कि ये products यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी production capabilities में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है export.
1: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था. देखिए हो क्या रहा था, बताऊ हकीकतन हो गया. मान लिए टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे. हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे. एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था. तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य यह था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इंपोर्ट, आप यहीं बनाएंगे. और एमएसएमईज बना सकते हैं आजकल, तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं. तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे. पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए. सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी. तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इंपोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट. तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इंपोर्ट के खर्च था वो कम हुआ है. नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर, वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट.
3: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े.
1: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट, रॉन्ग. It is security and development.
2: Yes.
1: Defense and development. Civil military fusion. साथ चलना है. So deep, जो मूलभूत जो चर्चा थी वो ही गलत थी. We have turned it around. We grew up in silos. Government, private sector, PSUs, private sector, academia अपनी दुनिया में. अरे भाई academia में आप invest नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, pure sciences नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आई नहीं सकती. Everybody has to integrate. So there is a larger conceptual change also which is driving all these, I would say, mega reforms.
2: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में, इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है?
1: बिल्कुल. तो आप एक छोटी सी कहानी सुने. I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा. He said space is an exquisite thing. Few countries to it. Countries, I'm emphasizing. So, USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें. हमारे सिलसिले में क्या हो रहा था? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say,

0: स्लॉट्स लिप्ट इनएफिशिएंसीज, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन। तो एफडीआई में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए। सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमको पीएसयू या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन। सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा, दे हैव टू बिकम AI कंपनीज
1: बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल। स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में।
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज़ दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक। यू नो ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है आईजी साहब पता नहीं क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है। आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया, मैंने आपको इनाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स, किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड, एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है। सो I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी।
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में, अगर हम देखें पिछले 12 सालों में। मिस्टर थेतेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए।
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट, और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं, उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुंच गए हैं, सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दो एरिया। अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है, हालांकि कुछ है, एक तो उल्फा है आसाम में जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है, वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता। लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे।
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

8:45 है स्टूडियो की घड़ी का समय। आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। और दर्पण कार्यक्रम के पहले पायदान की ओर रुख करते हैं जिसका नाम है एक नज़र। और एक नज़र में आज का हमारा विषय है वर्ल्ड कॉटन डे। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस अर्थात वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। ये दिन वैश्विक स्तर पर कपास के आर्थिक और सामाजिक महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। शुरुआत की अगर बात करें तो विश्व कपास दिवस की शुरुआत सबसे पहले 7 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसकी पहल कॉटन फोर यानी 4 मुख्य अफ्रीकी देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के अनुसार अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कपास के अनूठे लाभों को आधिकारिक मान्यता देते हुए हर साल 7 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। महत्व की अगर बात करें आजीविका के स्रोत के अंतर्गत कपास दुनिया भर के लाखों छोटे किसानों और श्रमिकों को रोजगार और आय प्रदान करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर ये कई विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए निर्यात राजस्व का मुख्य साधन है। इसके अलावा टिकाऊ उत्पादक के तौर पर ये दिन सतत कृषि, बेहतर पर्यावरण और कपास क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भी जागरूकता बढ़ाता है। चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष कपास उत्पादक देश हैं। विविध उद्योग के तौर पर कपड़ों के अलावा कपास के बीजों का उपयोग खाद्य तेल, पशुओं के चारे और साबुन उद्योग में भी किया जाता है।

एक नज़र यहीं तक बात हो रही थी आज के खास दिन को लेकर, वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर, और फिल्मी गीत के ठीक बाद रुख करेंगे अगले पायदान की ओर, जिसका नाम है राही मतवाले।

कलाकार फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को। इस गीत को सुनते सुनते अगले पायदान की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है राही मतवाले। और राही मतवाले में आज बात करेंगे तमिलनाडु स्थित धनुषकोड़ी। धनुषकोड़ी तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक ऐतिहासिक और सुंदर तटीय स्थान है। इसे भारत का अंतिम छोर या फिर होस्ट टाउन भी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो ये स्थान एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ के अंतिम बिंदु को अरिचल मुनाई कहा जाता है। यहाँ से श्रीलंका का तलाई मन्नार केवल 24 से 25 किलोमीटर दूर है। 1964 के चक्रवात की अगर बात करें तो 22 दिसंबर 1964 को यहाँ एक भयंकर चक्रवाती तूफान आता है। इस त्रासदी में पूरा शहर, रेलवे स्टेशन, चर्च, स्कूल और एक यात्री ट्रेन समुद्र में समा गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सरकार ने इसे रहने के लिए सुरक्षित नहीं है ये तय करवा दिया था। और पौराणिक महत्व की अगर बात करें तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहीं से भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण भी शुरू करवाया था। युद्ध के बाद विभीषण के अनुरोध पर श्री राम ने अपने धनुष की नोक से इस सेतु को तोड़ा था, इसीलिए इसे धनुषकोड़ी कहा जाता है। अंतिम सड़क की अगर बात करें तो रामेश्वरम से धनुषकोड़ी तक की सड़क यात्रा बेहद ही रोमांचक है, जिसके दोनों तरफ नीला समुद्र दिखाई देता है। और संगम की अगर बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो दूसरी तरफ खंडर की बात भला कैसे ना करें। यहाँ पर 1964 के तूफान में तबाह हुए पुराने चर्च और रेलवे स्टेशन के अवशेष आज भी

देखे जा सकते हैं। फिलहाल राही मतवाले में आज बात हो रही थी धनुषकोड़ी को लेकर। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहती है आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा, और छोड़े जाना चाहती है आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तराना। आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिलूंगी बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, तब तक के लिए ट्यून रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल के साथ।

0: 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. Is avsar par main apne aadarniya air veterans ko naman karta hu. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज the unwavering support and encouragement

0: fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein hum samast vayu yodha Bhartiya Vayu Sena achuk abhed एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे. जय हिंद.
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स यू वर लिसनिंग टू अ मैसेज बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
3: This is the Sancheta channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, corresponding to 1008 kilohertz. And now it's time for the weekly English magazine program, Horizon.
4: This is Akashvani Kolkata. Here we present the weekly magazine program, Horizon.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए

0: एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.

0: राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
1: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
2: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम VBG राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण

0: औरों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VVGRAM जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
1: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत GRAM जी, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत GRAM जी के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्कसाइट्स पर जो है विकसित भारत GRAM जी के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स है उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत GRAM जी का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत GRAM जी लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अब इसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
0: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
1: विकसित भारत GRAM जी का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा, टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत GRAM जी में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है, जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है, वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है, जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
0: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?

0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा, ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए, या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें सौर स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गांव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत, जी राम जी, जब हम कहते हैं तो उसके शुरुआत में ही विकसित भारत आता है
1: जी।
0: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी, निखिल जी, आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का। और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग वो 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है। और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल एक या दो बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे यह पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई

0: बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है या करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वो वर्कशेड बना सकती है। कोई SHG चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा, परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाए जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़कर के दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे हैं कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जी राम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के

0: माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा, और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेके वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं को बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए, ये पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश, जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं, बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहाँ पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं, जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसी

0: लिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट, कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की, तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस हैं, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को भी स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशंस आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलेमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहां पर आई है, कहां पर लोगों ने काम किया है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है, और हम भी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले एक दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या यह सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पर भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे।

0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है, और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी। हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जी राम जी में जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उन्होंने भी विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जी राम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जी राम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जी राम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही हैं तो वीबी जी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
1: श्रोताओं, भी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद निखिल जी,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुई वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र में संबंध मजबूत होंगे। भारत और रोम वैश्विक मंचों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भावीना पटेल

0: भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
1: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
0: एक अन्य पोत अल्फा वतन पर भी कल हमला हुआ। कैप्टन स्मिथ मच्छर के स्वास्थ्य पर श्री जायसवाल ने बताया कि कैप्टन की हालत में सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। रूस की सेना में भारतीय नागरिकों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत रूस के साथ शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 259 भारतीय रूस के सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 139 को मुक्त कराया जा चुका है। भारत सरकार ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों से रूस की सेना में शामिल होने के प्रस्तावों से दूर रहने का आग्रह किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन ने सराहना की है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला वर्तमान में भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे इस सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन और नॉर्वे वाले EFTA अपने व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मना रहे हैं। शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्षों के मंत्रियों और व्यवसायों के बीच सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इससे कुल मिलाकर लगभग 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
2: EFTA के एग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 1,60,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है। नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिजाइन बेस, रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा। युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के MSMEs के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के, नॉर्वे के, लिक्टेनस्टीन के MSMEs जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा।
0: नई दिल्ली के यशोभूमि में 4 दिवसीय 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ये वैश्विक सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी मंच उपलब्ध कराएगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुँच बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सहित प्रमुख 9 क्षेत्र शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक हिस्सा लेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए भारत इटली स्थायी कार्यबल की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई।

0: इससे पहले कल भारत इटली आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक हुई थी। दोनों देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों ने इन बैठकों में हिस्सा लिया। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित आतंकवाद रोधी क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। संयुक्त कार्य समूह और स्थायी कार्यबल की अगली बैठक इटली में होगी। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वहां एक इमारत नष्ट हो गई। कीव और अन्य शहरों में भी लोगों के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बड़े पैमाने पर जानबूझकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को तत्काल और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने 2018 और 2023 एशियाई पैरा खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और इटली वैश्विक मंचों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत

0: निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं।